मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हरा

हत झम तदिता तदित धन तक नक झम तदितई तदित झनु ताहत झम तदिता तक नक झम तदितई ताहत झम तदितक नक झम तदित तिंगिण तुम तिंगिण तुम कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर्त कर